0: चूम लो पहले मुझे। भूत प्रेत महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं, किसी लोग जंगल को पिशाच बन कहते हैं।
1: पिशाब?
0: पेशाब नहीं, पिशाच।
2: शादी यहीं करेंगे, इट इज कंफर्म।
0: मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता, वधूसुर आएगा चमगादड़ों की सेना के साथ, लोगों को मार देगा। इसलिए यहाँ कोई नहीं रुकता सिवाय भूतों के।
3: टाइम क्या हुआ है भैया?
4: बड़ा बहुत टाइम खराब चल रहा है, जाने तो पेल दूंगा जाए भी।

0: पहले मुझे भूत प्रेत महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं, इसलिए उस जंगल को पिशाच वन कहते हैं।
1: पिशाच?
0: पेशाब नहीं, पिशाच।
1: शादी यही करेंगे, इट इज कंफर्म।
0: मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता, वधूसुर आएगा चमगादड़ों की सेना के साथ, लोगों को मार देगा, इसलिए यहाँ कोई नहीं रुकता सिवा भूतों के।
2: टाइम क्या हुआ है भैया?
1: बड़ा बहुत टाइम खराब चल रहा है, जाने तो पेल दूंगा जाए भी।